0: शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: इंस्पायर FM ऑन 105.1 FM। आई हैव

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
2: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
3: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
0: अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है, या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
4: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
5: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिसेंट हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
6: इस्लामी नुक्ता निगाह से इल्मी और फिक्री मौजूदात का जायजा, इस्लाम की इंसानियत साज तालीमात का ख्याल अफरोज तज़किरा, रवादारी और बकाए बामी कज़ा में फिक्र और नज़र की तदगीर और अखलाकी बालीदगी पर मबनी मौजूदात पर तहकीकी गुफ्तगू, वक्त आलात और माहौल के तकाजों के मुताबिक समाजी इस्लाह का ज़ामन। सुनते रहिए और सवालात पूछिए इंस्पायर एफएम पर। प्रोग्राम सदाए तकदीर हर बुध दिन 11 बजे प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी के साथ।
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:00.
8: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
9: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
8: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
8: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. Only on Inspire FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: जी
1: इतने
0: सर,
1: बड़े बड़े
0: मैं
1: डिबेकल्स
0: वही
1: होते हैं, इतने बड़े बड़े डिबेकल्स होते हैं, आपके करीब तरीन लोग जिंदगी के माँ बाप मर जाते हैं, दोस्त बेहतरीन मर जाते हैं, आपकी जिंदगी के करीब तरीन लोग जिनकी वजह से आपने जिंदगी एक सर्टन तरीके से बनाई होती है, वो आपसे नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वो फिर ज़िंदगी लोगों के काबू से निकल जाती है और फिर अजीब दुखी दुखी सी वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनको और दूसरों को भी वो ये बताते हैं कि ज़िंदगी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे नहीं है ज़िंदगी, ये हमने ऐसा किया है, हमारी कैपेसिटी चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा है, लेकिन हम ऑपरेट नहीं करना चाहते, हम डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, हम कम्फर्ट के अंदर गिरफ्तार होकर चाहते हैं, अब ये कम्फर्ट आखिरी दिन तक ऐसा ही रहे, इंसान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परमानेंटली ऐसा रहे, ऐसा नहीं हो सकता परमानेंटली, इंसान उसकी ज़िंदगी में कभी क्या होगा, कभी उसके फाइनेंशियल मसले होंगे, कभी हेल्थ के मसले होंगे, कभी फैमिली के मसले होंगे, आपने अगर किसी के साथ चलना है तो अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे दोस्त बने तो अपने फाइनेंसेस, अपने रिश्ते, अपने मामलात सारे जब आप सेटल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो क्वालिटी टाइम का आपके पास किसी दोस्त के लिए वक्त होगा, तो वो दोस्ती पनप पाएगी और लंबे अरसे तक आपको दोस्त से वो फीलिंग आती रहेगी। लेकिन ये जो लोग बाकी होते हैं, ये कई लोग आते हैं जी दोस्ती में फलाएं, ये वो सिर्फ फटीक देते हैं आपको, सिर्फ परेशान करते हैं, सिर्फ दुखड़े सुनाते हैं, सिर्फ उनके एक लाइफ में मसले होते हैं, और फिर आप इसीलिए लोगों से अवॉइड भी करना शुरू कर देते हैं कि कोई नई बात, कोई नई चीज़ हो, और ये कि मसले ना बताएं ऐसा नहीं है, शेयरिंग और बात है, ये कि ज़रूरत के वक्त दोस्त आपके काम ना आए या आप उसे एक्सपेक्ट ना करें, ये भी और बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुसलसल एक ही बात करते रहना, मुसलसल एक ही तरह का रोना रोते रहना, मुसलसल एक ही चीज़ पर पीछे पड़े रहना किसी दोस्त के, वो आप लूज़ कर जाएंगे लोगों को। ये जो कुछ नहीं है इस वक्त मेरे पास या आपके पास या किसी के पास, वो हमें या तो लेना नहीं आया, या हम उसको डिज़र्व अभी तक नहीं करते, या हमें अभी तक उस बात की अकल नहीं आई है कि वो हमारे लिए है या नहीं, ये तीन चीज़ें ज़िंदगी में जब आप देख लेंगे तो मसाइल मसाइल रहते नहीं, और ये सारी बातें अप्लाइड हैं मेरी लाइफ में, इसलिए मुझे ये सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये किसी वक्त कहीं भी बैठ के बता सकता हूँ।
0: जी सर, मैं इसी से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ, जैसे अभी मेरी जॉब है, आई वर्क इन अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एंड हाई स्पीड हाई डेंजरस एनवायरनमेंट, और जब मैं वहां होता हूँ आई डोंट फील डेंजरस, और मुझे सेफ्टी की कोई, बिकॉज एवरीथिंग जस्ट कम्स टू मी, और मैं effortless ease se kaam karta hu, like I go out with trainees, I show them how to do, and they're like how and why are you so calm, to main us baat ko jab sochta hu, like जब ये ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लाइक जब बंदों से डीलिंग की बात आती है
1: जी,
0: तब मैं होता हूँ
1: भाईजान, ये आपको बात को गौर से समझें, योर जॉब इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर लाइफ इज, जॉब आज ये है, कल कोई और हो सकती है, मसला हमारा ये, मैं आज ही किसी को बात बता भी रहा था, समझा भी रहा था कि हम लोग, उन्होंने मुझे बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन ने चीज़ों को इतना यूज़र फ्रेंडली बना लिया कि आप उनके ऐप पे जाएं, आप सिर्फ नाम लेते हैं किसी चीज़ का तो वो चीज़ अवेलेबल कर दी जाएगी, तो मैं उनको बात समझा रहा था, मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, जो भी आपको चाहिए, उसको यूज़र फ्रेंडली बनाएं, आपको इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो आप एंड यूज़र आपके पास आएगा, जो इंसान है वो आपको चाहिए, तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़बान को, अपनी डीलिंग को यूज़र फ्रेंडली होंगे तो चीज़ आपके पास आएगी। आपको बिजनेस चाहिए तो आप कितने यूज़र फ्रेंडली हैं, आपको हर चीज़ को जितना आसान करेंगे लोगों के लिए, क्यों रब ने, और साइंस चेक करें, रब ने अपने अल्फाज में कहा तुम में से बेहतरीन इंसान वो जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, उससे क्या होगा, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, आसानी पैदा करेंगे, ज़बान को आसान करेंगे कि उनको समझ आए, ख्वाहिश को आसान करेंगे, ज़रूरत को आसान करेंगे, मोशन को आसान करेंगे, तो लोगों को समझ आएगी कि आपको क्या चाहिए, आप कन्वीनियंट होंगे कि आपसे लोग आके बात कर सकें, मसाइल बयान कर सकें, परेशानी बता सकें, तो आप हल भी कर पाएंगे और इमोशंस भी होगा, लोग आपसे कनेक्ट भी करके रहेंगे। और रब क्यों चाहता है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि उसकी आसानी, उस आसानी पैदा करने वाला बंदा, उसने अपनी किताब में आसान तरीन ज़बान से इतनी मुश्किल चीज़ें आपको बताई ताकि लोग कनेक्ट कर सकें, उसकी तरफ आ सकें, तो उसके बंदे भी जो हैं जितना चीज़ों को आसान करेंगे बंदे उनकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि बंदा बंदे के साथ, आपकी ज़बान में बंदा बंदे तो दारू है, हमने जो कर दिया वो बंदा बंदे तो मारू कर दिया ना हमने, क्योंकि हरकतें हम ऐसी करते हैं, तो जितना आप खुद को आसान करेंगे, अब ये जितना देखो बिजनेस में, अब आप एक काम करते हो, करते करते आपको चीज़ों की समझ आ गई है, तो यू आर डूइंग योर जॉब विद एन एफर्ट।

0: effortless ease. It's coming naturally to you. Even people are asking, how are you able to do it? इतनी चीज़ें जगल करके आप बड़े काम रह के सारी चीज़ें डील कर लेते हो, तो ये कमाल किस्म की एक आपका जो है ना वो एक आपके बारे में एक फीलिंग डेवलप हो गई है। आप खुद सोचो, लाइफ में आप ये नहीं कर पा रहे। तो मुझे ज़िंदगी में ये बातें समझ आईं, अच्छे सेल्समैन का मकसद अच्छा इंसान बनना है और कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से आप बेच सकें, प्रोडक्ट को, आप सर्विस को, अपनी बात को। इसी तरह लॉयर हैं तो आपने जो भी लॉजिक और रीज़न यूज़ करते हैं लॉ को, वो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। इसी तरह आप डॉक्टर हैं तो कितने ही डॉक्टरों की सेहतें बर्बाद हैं, वो डॉक्टर हैं तो सारा इल्म जो है मेडिसिन का और ह्यूमन एनाटॉमी का, वो बायोलॉजी का सारा यूज़ करें और ख़ुद को ठीक करके दिखाएं सामने, या दूसरों पर अप्लाई करके दिखाएं। ये सारा कुछ जो है ना, हमें कंडीशन कर दिया गया कि ये नौकरी के लिए, ये एक्चुअली नौकरी के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी के लिए है। नौकरी इसमें 9 to 5 का एक काम है सिर्फ, बाकी घंटे जो है 16 उसमें क्या करेंगे हम। तो ये समझना है, जो चीज़ भी आपको अच्छी कम्युनिकेशन है आपकी अपने जॉब के बारे में बता सकते हो, या अच्छी कम्युनिकेशन है आप अपने साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, या पीपल दोज हु वर्क विद यू उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, तो घर में वो रिलेशनशिप नज़र आना चाहिए, वरना मेरे किसी काम के नहीं हो आप। इसी तरह आप जो काम ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम करते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी नज़र आनी चाहिए जो आपकी प्रोफेशन ने आपको दी है। आप फौजी हो, आपका डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए, आपके पंक्चुअलिटी नज़र आनी चाहिए, आप जो वर्ड बोलें उसको आपको करके देना है। इसको कहते हैं कि आपने किसी से कुछ सीखा। वरना जिन्होंने मेरे साथ, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी की सीखी और इन तमाम चीज़ों में वो मुझसे बेहतर थे, हेल्थ में वो हमसे बेहतर थे, आज उनकी हेल्थ बर्बाद है। फाइनेंसिस में वो हमसे बेहतर थे, आज उनके फाइनेंसिस उनके काबू में नहीं। जल्दी रिश्ते करने में, लोगों को बनाने में, और लोगों के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने में, और बड़े बड़े काम करने में वो हमसे आगे थे, आज कोई उनका ना नाम लेता है, ना उनसे कोई रिश्ता रखता है, ना सीखता है। हर वक्त रोते पीटते परेशानी रहते हैं और दुखी रहते हैं कि जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कुछ हासिल नहीं मिला। ये सब जो है नफ्सा नफ्सी है, वही सारी बातें सेडिस्ट जो लोग करते हैं वो सब कर रहे हैं। तो सीखा क्या आपने? ये सीखा कि आपकी ज़िंदगी आपके बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आपकी जॉब है। इसी तरह एफर्टलेस ईज से आप अपना काम कर सकें, आप एफर्टलेस ईज से अपने फाइनेंसेस हैंडल करें, एफर्टलेस ईज से अपने इमोशंस हैंडल करें, एफर्टलेस ईज से अपने रिलेशनशिप्स हैंडल करें। यही सारे काम आप बिजनेस में करते हो कि नहीं, जॉब पे? वो घर पे क्यों नहीं करते? यही चीज़ें हमें समझनी है कि वो सब का सब जो आपकी ज़ात में वहाँ है, यहाँ आएगा तो इसका मतलब है आपने उससे कुछ सीखा और असल फ़ायदा आपका अभी हुआ। जॉब में तनख्वाह के लिए आप काम नहीं करते। डिग्री जो होती है ना, किसी बड़े सियाने बंदे ने कहा था, जब आपको डिग्री मिलती है या वो क्वालिफिकेशन होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता। अक्सर वो डिग्रीज हम जो लेते हैं जब जॉब करने जाते हैं, वो पूरी की पूरी डिग्री उस जॉब में काम ही कहीं नहीं आती। पर डिग्री का मतलब ये है कि 16 साल या 14 साल तक आप मुसलसल स्कूल गए, आपने इम्तिहान का प्रेशर बर्दाश्त किया, आपने वहाँ पीयर प्रेशर बर्दाश्त किया, आपने वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें, मसाइल, तकलीफ़ें, परेशानियाँ हुई होंगी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब बर्दाश्त की, यू सेल्ड थ्रू, और उसमें से आप एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आपकी ये डिग्री है आपकी, आपने इसमें से बच के निकले, इसमें से कुछ आपको मार पड़ी, कुछ आपने हासिल किया, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे, इस बात पर आपको नौकरी देते हैं। ये है क्वालिटी। डिग्री इसलिए ली थी, इसलिए नहीं ली थी कि इससे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उससे मैं पैसे कमाऊंगा। और मैं अपने उस दिन अपने बच्चे को उस दिन बता रहा था कि ये डॉक्टर बनने के लिए तुझे डॉक्टरी में नहीं डाला हुआ, डॉक्टर तो मेरे इर्द गिर्द, अगर मुझ पे चले, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसको मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा वैसा बने, कोई इस काबिल नहीं। बिकॉज लाइफ में हम सारे फेल हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कुछ भी हूँ, मैं कभी उस डॉक्टरी की तरफ ना उनको लेके जाता। लेकिन डॉक्टर बनने से आपको, उनको मैं बता रहा था, बॉडी है क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मेडिसिन कैसे काम करती है, देनी भी है या नहीं देनी, ये कैसे काम करती है, और उसके बाद आप अपना काम घर से भी शुरू कर सकते हैं, फीस लेके या उनको आपको इर्द गिर्द के इलाके से, ताकि आपको एक हुनर आ जाएगा जिसमें आप अपने पे अप्लाई करेंगे, अपनी फैमिली पे अप्लाई करेंगे, अपने सीनियर्स पे अप्लाई करेंगे, अपने इर्द गिर्द के गरीब मस्कीन जो लोग हैं उस पे अप्लाई करेंगे, मुझे ये बंदा बनाना है आपको, और उसके ये जब बन जाएगा, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा, और उस वक्त तक आप इतना चीज़ों को बिल्डअप कर लेंगे कि खुद, लेकिन आपको और फर्स्ट आने की भी ज़रूरत नहीं, अपनी जान को हलकान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ है क्या, ये काम कैसे करती है। 10वें नंबर पे भी गुड, 20वें पे भी आप परफेक्टली फाइन है एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द होल मैकेनिक्स. मेडिकल कॉलेज है क्या, वरना और बेसिक अगर जो तुम बोल रहे हो वो कर नहीं रहे, जो काम तुमने कमिटमेंट कर रहे हो उसको तुम पूरी नहीं कर पा रहे. काम हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे का मतलब है तुम वही प्रोडक्ट बन रहे हो जो गांव में या शहर में लोग हैं. और इतने जानवर, हमें एक और जानवर को रिफाइंड बनाने के लिए क्यों पैसे ज़ाया करूँगा या अपना टाइम और इमोशन में क्यों ज़ाया करूँगा. वो तो सेल थ्रू करते हैं, तुम कुछ भी पढ़ोगे सेल थ्रू करके निकल जाओगे. तो इंसान कैसे बनोगे, मुझको बेसिक इसके ऊपर ध्यान है मेरा. ना मुझे रिजल्ट चाहिए फर्स्ट आने के, ना मुझे ये चाहिए कि जी आपने पैसे क्या बनाएंगे, क्योंकि मुझे वो कमिटमेंट चाहिए. आप जो बोले वो नज़र आना चाहिए, मुझको इंडिविजुअल क्रिएट करना है. और अगर आप वो नहीं बन सकते तो मेरा टाइम, एफर्ट, पैसा, सब ये सब ज़ाया हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए. उसकी जगह आप रेगुलर कोई भी काम करो, आई डोंट केयर. तो तुम सेटल भी हो जाओगे, काम भी कर लोगे, बस दुनिया तुम्हें चलाकी भी सिखा देगी, तेज़ी भी सिखा देगी, और आखिर में तुम रोते हुए, पीटते हुए, परेशान होते हुए एक और बंदा इजाफा हो जाएगा और मेरा सारा टाइम और एफर्ट और एनर्जी ज़ाया हो जाएगी एक इंसान को जिसको मैं इतना कुछ दे रहा हूँ. तो जब तक हम अपनी औलादों को ये बातें नहीं बताएंगे, अपने रिश्तों में ये बातें नहीं बताएंगे, और दूसरी बात, और जब तक ये लोग अपने पे काम नहीं करेंगे, ये हमेशा डरे रहेंगे. अगर कोई बंदा अपनी हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम नहीं करता, कुछ दिनों के बाद दूसरा बंदा जो ये सब कर रहा है उसके लिए आप रिडंडेंट हो जाएंगे. वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा और आपकी इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सेस, घबराहट बढ़ती रहेगी हमेशा. आप फिजिकली उनसे पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा मैं फिजिकली इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा. आप मेंटली पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा मैं डम हूँ या मेरी बात की कोई तोकी नहीं बन रही, और या मेरे साथ वो टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते. ये बेहतरीन मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ, दोस्ती में हो, शादी में हो, पार्टनरशिप में हो, किसी चीज़ में भी हो, अगर आप साथ नहीं चले वो उस इंसान के जो आपको वो मोटिवेट नहीं कर रहे, इंस्पायर नहीं कर रहे, या वो दूसरा बंदा आपको मोटिवेट या इंस्पायर नहीं कर रहा. मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, मेरा कोई ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं है जिसके साथ मेरा ताल्लुक है और वो मुझे इंस्पायर नहीं करता किसी ना किसी फील्ड में. और मैं भी, मुझे लोग कहते हैं कि आप इसमें इंस्पायर कर रहे हो, जब वो बोलते हैं तो जब वो उससे ऊपर नीचे करते हैं, फिर मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ कि अगर इंस्पायर कर रहा होता तो आप ये नहीं ये कर रहे होते. इस पर ध्यान दो, कार्रवाई पे ध्यान नहीं तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कहें जी आप बड़े इंस्पायरिंग हैं, आप बड़े लविंग हैं, आप बड़े केयरिंग हैं, हमने आपने हमारे लिए ये किया, आप बड़े नाइस हैं. उसमें बदले में दे क्या रहे हो? एटीट्यूड कम करो, बेवकूफ़ी कम करो, स्टुपिडिटी कम करो, इनसिक्योरिटीज़ कम करो, अपने काम पर ध्यान दो, जो कमिटमेंट किए वो पूरी करो, अपने आप को स्ट्रांग करो, कोई पैशन है परसू करो, क्रिएट करके कोई चीज़ दिखाओ, खुश होकर दिखाओ, ग्रेटफुल होकर दिखाओ, और ज़्यादा ग्रेटफुल होकर दिखाओ. ये काम है आपके, इससे लोग आपके साथ, आपको कुछ नहीं करना. और इन सारे कामों में, ये रब से सीखा है मैंने, इन सारे कामों में क्या होगा, आप अपने इंडिविजुअल बनते जाएंगे, आपकी हाई सेल्फ इस्टीम होगी, आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बेहतर इंसान बनेंगे. आपका फ़ायदा होगा, मैं रहूं या ना रहूं आपके साथ या आपकी ज़िंदगी में, आपका फ़ायदा हो जाएगा. रब भी यही चाहता है हमसे, क्योंकि वो गिविंग है, उसकी वापसी का उसको टेंशन नहीं है, वो खुद मिल जाएगा. आपके लिए वो चाहता है कि आपका सिस्टम एक बन जाए, आप अपने लिए किसी काबिल बनो. जब बन जाओगे तो फिर फैसला करना मेरे साथ रहना या मुझे छोड़ के जाना. ये असल चीज़ है इंसान बनाने वाली. और जिस इंसान का इतना ज़र्फ नहीं होता, इतना कैरेक्टर नहीं होता, और यहाँ इंसान बार बार इंसान होने के नाते वो इतना नीच हो जाता है, मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे ये किया मैंने तुम्हारे लिए, वो किया मैंने, वो किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने अपने लिए कर रहा था, साथ आपके लिए भी कर रहा था. मैंने अच्छा खाना बनाया, आप मेरे साथ उठते बैठते चलते हो, आप भी वो खाएं. मैंने एक चीज़ क्रिएट की, आप उसमें मेरी हेल्प करते हो, वो आपके लिए भी, आप उसको इन्जॉय करें. सो आपने और मिलके आपने मेरे साथ क्रिएट किए, तो खुद इन्जॉय करो. कंपनी है, दोस्ती है, रिश्ते हैं, इन्जॉय करो, डरो मत, घबराओ मत, हर वक्त परेशानी में ना रहो. तो ये जब तक इस तरह सोचेंगे नहीं हम, तब तक हमारी ज़िंदगी में कभी मिरेकल्स नहीं हो सकते. और ना कभी लोग सोच सकते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं. आप ऐसे इसलिए कि आपने सोच का तरीका बदला, आपने ध्यान गिविंग पे रखा, आप लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, डर ख़त्म हुआ, आपको ये बात समझ आएगी कि ये सब कहीं और से आ रहा है, और जिसने अभी तक इतना दिया वो मुझे और भी देगा. मुझे सिर्फ उसको डिज़र्व करते रहना है, मुझे अपने पे काम करते रहना है, मुझे अपने दिल को, दिमाग को साफ रखना है, ताकि इसमें साफ चीज़ की जगह बन सके, साफ एहसास की जगह बन सके, क्लीन लोग, क्लीन सोचें, क्लीन काम की जगह बन सके. खुद ब खुद आते रहेंगे और एक से बढ़कर एक आएगा, इसलिए टेंशन ख़त्म होगी, डर ख़त्म होगी, ये छोड़ देगा, इसको ये नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा सोच रहा है उसको ये नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको टाइम नहीं दिया तो ये कर देगा, इसको अगर अच्छा फील नहीं कराया तो वैसा कर देगा। ये सब आपके अपने मसाइल हैं, आप खुद करेंगे, हम आपको इन्वायरमेंट देंगे साथ साथ, हम भी उसमें पनप रहे होंगे साथ साथ, इवॉल्व करेंगे, ग्रो करेंगे, आप भी करेंगे और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगे। हम आपके साथ नहीं भी रहे तब भी आप 1,25,000 के $1 million मैन है आप या वुमन है। ये है सोचने का तरीका। अगर हम इस डगर पे सोचने लग गए तो वैसे ही इतना कुछ मिल जाएगा कि ना तो शुक्र ख़त्म हो रहे होंगे और ना ही मरने से पहले आपकी इन्जॉयमेंट ख़त्म हो रही है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का। इन्जॉयमेंट, इन्जॉयमेंट एंड फ्री विल टू चूज़, ये दो चीज़ें अगर कोई बंदा कर गया, जो लोग इबादत करते हैं, इंट्रेंस यू नो कंपनीज बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, रातों को जागते हैं, इतना कुछ करते हैं, इनको क्या, इनको कुछ मिल रहा है, वो मिल साथ साथ रहा है और हमेशा मिल रहा होता है। ठीक है हीरा सिंह जी?
1: जी सर, अभी आपकी बातों से सर आपकी इतने ध्यान से सुन रहा था, इतनी दिल को लग रही थी, मुझे एक बात अभी समझ आई। आप जो भी कर रहे हो वो आप हमेशा ही कहते हुए बात, जितनी ऑथेंटिसिटी और पैशन से करते हैं वो बहुत जरूरी है हर काम के लिए। और मैंने ये नोटिस किया, मेरे जैसे हम काम की बात कर रहे थे, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू फ्लरिश इन दैट। पर जब अपने आप के अपने ऊपर बात आती है तो मेरा मेन इमोशन जो है वो डर है। वो मैं अभी मुझे समझ आया और उसके उसके ऊपर मुझे काम करना है।
0: एक्चुअल में ना जब आपका नहीं सिर्फ हम सब का, क्योंकि सर्वाइवल इंसान के लिए ना उसकी सृष्ट में शामिल कर दिया गया कि उसको हर वक्त अपने सर्वाइवल, मेरा क्या होगा, ठीक है, उस सर्वाइवल से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है। जब आप इस बात को दिमाग में ड्रिल कर लेंगे ना, आप यकीन करें, मैं बचपन में जितना बीमार था मुझे नहीं लगता था और मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को नहीं लगता था कि मैं इतना लंबा सर्वाइव करूँगा। फिर मैं जब जिस दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग में गया, मुझे उसमें भी नहीं लगता था कि मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊँगा, एजमा के साथ, वीक यू नो जिस्म के साथ, बोन्स के साथ, जो भी जॉइंट्स के साथ, मुझे उसमें भी ये लगता था मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। कुछ एक दो काम मैंने ऐसे किए, मुझे लगता था मैं ये फिज़िकली नहीं या इमोशनली नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। कुछ एक दो ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, मुझे लगता था मैं स्पिरिचुअली इसको नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, लेकिन मैंने सर्वाइव किया। इसका मतलब ये था सारे मेरे दिमाग के डाउट्स थे, आई वॉज मेंटली फिजिकली एंड स्पिरिचुअली मोर स्ट्रॉन्गर देन वट आई थाट ऑफ माई सेल्फ। तो आई डिड नॉट नो दीज थिंग्स, बट मुझे समझ गया। और मैं 3 दफ़ा नियर डेथ एक्सपीरियंस से बचा जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद मरा नहीं मैं अभी तक। इसका मतलब है कि मरने का टाइम जब बोला गया है तो उससे पहले नहीं आएगा। और सर्वाइवल के लिए मुझको, मैंने ये बात सीखी कि पत्थर के अंदर कीड़े को भी सर्वाइव करने की टेंशन नहीं है, उसको भी पानी और खुराक जो मिलनी है उसको मिल जाती है। कीड़ों को, परिंदों को, जानवरों को, शेरों से लेकर लूंबड़ी, हर एक की खुराक उसको मिल रही है, वो सब सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइवल से बाहर निकलना है, डर से बाहर निकलेंगे तो असल इंसान का पोटेंशियल उसको नज़र आना शुरू हो जाता है। देखें, जब आप टेंशन में होते हैं आपको कुछ नज़र ही नहीं, हर चीज़ आपको ब्लॉक नज़र आ रहा होता है। जब एकदम आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सामने पड़ी हुई चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, चीज़ें छुप जाती हैं आपकी आंखों से, बिकॉज वो उस पर आपको डर का पर्दा आपकी आंखों के आगे पड़ जाता है।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. The number one radio station for Luton. This is Inspire FM.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
8: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive.
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
13: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Fasi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

उससे अगर आप कहो हम्द अल्लाह की करो तो वो कहेगा वो तो मैं करता ही हूँ और साथ में ये कुछ और भी हैं उनके भी करता हूँ। यानी उसको अल्हम्दुलिल्लाह से इनकार नहीं है, उसको लिल्लाहिल्हम्द से इनकार है। तो क्योंकि उसको शिर्क है ना उसका मसला, तो उसके शिर्क के हल के लिए उससे कहा गया लिल्लाहिल्हम्द। लेकिन फातिहा में क्या मुशरिकून से बात हो रही है? फातिहा में किससे बात हो रही है? हर इंसान से और हर इंसान की फितरत से, और इंसान की फितरत के अंदर ये डिबेट है ही नहीं, ये मसला है ही नहीं कि एक से ज़्यादा रब है कि नहीं। हमारे अंदरूने हमारी गहराइयों के अंदर एक रब है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बात दिल में है वही सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए वहाँ लिल्लाहिल्हम्द नहीं है। ओके, किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा पिछले लेक्चर के बारे में, ईद की नमाज पे हम लिल्लाहिल्हम्द क्यों कहते हैं? मैंने क्या कहा था लिल्लाहिल्हम्द के बारे में, क्या मायने इसके? हम सिर्फ अल्लाह के लिए, और वो तो किसी मुशरिक की मुखालफत में आप कहोगे ना कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए, तो आप ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हो उसमें कहाँ मुशरिकीन आ गए? ईद की नमाज खुलकर तकबीर करना ये फतह मक्का के बाद हुआ है, जब बुत सारे टूट चुके और अब मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहे हैं पहली दफ़ा, और मक्के में इस बात का मुजाहरा हो रहा है कि अब से हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, अब बड़ाई सिर्फ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल्हम्द। वहाँ इस बात की सेंस बनती है और उसी को हम हमेशा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी फतह को। वहाँ शिर्क का खात्मा हुआ है और सिर्फ एक रब की हम्द हमने करनी है, इसीलिए वहाँ पर लिल्लाहिल्हम्द की सेंस बनती है, उसकी हिकमत होती है। ठीक, अच्छा, आगे है, ये भी कह सकते हैं अरबी में लिल्लाही हम्दुन, हम्दुन अलिफ लाम के बगैर, अल के बगैर। अगर आप लिल्लाही हम्दुन कहेंगे तो उसका मायना यह होगा कुछ हम्द अल्लाह के लिए, वो तो आपको वैसे ही वाजह हो जाएगा क्यों मुनासिब नहीं है। अल इस्तिक्राक भी कहते हैं उसे, अल से क्या बनता है? तमाम हम्द अल्लाह ताला के लिए, और ये कुरान का फलसफा है, तमाम हम्द अल्लाह ताला के लिए। देखिए, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में हमने कुछ चीज़ें, कुछ कामयाबियां हमें मिली हैं ज़िंदगी में। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, आपको कोई जॉब मिली है, आपको कोई बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ है, ये तमाम जो कामयाबियां हमें ज़िंदगी में मिलती हैं ये असल में हमारी नहीं है, असल में ये मेरी कामयाबी नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है। और ये सारी कामयाबियां, इनको आप नतीजा कह लें, नतीजा मेरे ज़िम्मे है ही नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ अल्लाह ने कोशिश दी है, और उसने अपने हाथ में हमेशा क्या रखा है? नतीजा। अब दुनिया की नज़र में अगर कोई मशहूर हो गया तो मशहूरी भी एक तरह की कामयाबी समझी जाती है, तो कहते हैं माशाल्लाह आप तो बड़े मशहूर हो गए, आप तो बड़े ये हो गए। मशहूरी उससे नहीं आई, मशहूरी कहाँ से आई थी? अल्लाह से आई थी। आपका बिजनेस तो बड़ा चल गया, इन्वेस्टमेंट उसने की है, मेहनत उसने की है, लेकिन जो बिजनेस चला है ना वो किसने चलाया है? वो अल्लाह ने चलाया है। तो हम कहते हैं ना तमाम हम्द अल्लाह के लिए, वो क्या है कि कोशिश तो मैंने की है लेकिन अल्लाह की कदर में मुझसे कहीं ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं जिसको अल्लाह ने नतीजा नहीं दिया, मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन है, मुझसे कहीं ज़्यादा अकलमंद है जिनको अल्लाह ने यह मौका नहीं दिया, जिनके लिए दरवाजे नहीं खोले, और ये मेरे लिए इसलिए नहीं खोले कि मैं ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। कभी अल्लाह इम्तहान लेता है ज़्यादा देने से, कभी अल्लाह इम्तहान लेता है कम देने से। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बात जहन में हमेशा रहती है कि जो कुछ अच्छा आ रहा है ना मेरी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी, वो असल में हमारा कारनामा है ही नहीं, वो असल में अल्लाह ताला की तरफ से। वह इंसान की मिल्कियत में कोई चीज़ है ही नहीं सिवाय उन कोशिशों के जो उसने की, कोशिश के अलावा कुछ नहीं है मेरा, कोई

0: मुझे कहते हैं माशाल्लाह आपको तो बहुत लोग सुनते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी सुनाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी कोशिश है, जो अल्लाह ताला किसी के दिल में डाल रहा है कि इसकी बात सुन लो, वो मेरी तरफ से थोड़ी आया है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। और वही बात कोई सुने और कहे इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई, और वही बात कोई और सुने और कहे ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बोरिंग बात कर रहा है, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यही होता है ना, किसी के कान में अल्लाह ताला ने कुन फयकून डाल दिया है, किसी के कान में नहीं डाला, उसका मुझसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह का एक नतीजा है। अच्छा आगे चलते हैं, लिल्लाह अल्हम्दु से। हाँ ये एक अहम लेसन है इसका, अरबी ग्रामर को मुझे उर्दू में कुछ समझाना पड़ेगा, इस्म और फ़ेल का फ़र्क। उर्दू में आपने सीखा होगा फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, एक ज़माने में सीखा होगा जब जेल में थे, स्कूल में थे। अच्छा फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, इस्म का कोई सीगा नहीं होता है, इसमें हाल, इसमें माजी, इसमें मुस्तकबिल, इस्म का कोई टेंस नहीं होता, ना वो माजी में होता है, ना हाल में होता है, ना मुस्तकबिल में होता है। जैसे ये मेज़ है, मेज़ का ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है, इसका कोई। लेकिन मैं कहूँ खाया, बैठा, पढ़ा, तो पढ़ने का एक माजी है, मैंने कल पढ़ा, या मैं अभी पढ़ रहा हूँ, या मैं कल पढ़ूंगा, यानी अफ़ाल का या तो माजी होता है, या हाल होता है, या मुस्तकबिल होता है। अगर मैं कहूँ मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, मैंने फ़ेल इस्तेमाल किया कि नहीं, फ़ेल इस्तेमाल किया ना। तो अगर कहा होता अहमदुल्लाह, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, बात तो फिर भी ठीक होती, अहमदुल्लाह रब्बल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम अद्दीन, ऐसे हो जाती बात। या हम कहते नहमदुल्लाह, जैसे खतीब कहता है शुरू में, आपके सोने से पहले आपने सुना होगा, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु, सुना है कभी? नहमदु, हम उसकी हम्द करते हैं, अरबी में कहते हैं हम उसकी हम्द करते हैं, तो ये फ़ेल का इस्तेमाल है। कुरान ने क्या कहा है? हम्द अल्लाह ताला की है। जैसे मैं कहूँ ये मेज़ इस इदारे की है, तो हम्द का लफ्ज़ जो कुरान ने इस्तेमाल किया है वो फ़ेल इस्तेमाल किया है या इस्म इस्तेमाल किया है? इस्म इस्तेमाल किया है। तो इस्म इस्तेमाल करने में और फ़ेल इस्तेमाल करने में क्या फ़र्क पड़ जाता है, ये बात समझ लें। पहली बात मैंने कही थी, फ़ेल तो तीन तरह के होते हैं, या तो माजी में, या हाल में, या मुस्तकबिल में। फ़र्ज़ करो मैं कहूँ मैं हम्द करता हूँ, पहली बात ये कि किस सीधे में बात हो रही है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, किस में बात की मैंने? हाल में, यानी मैंने इस बात की कोई ज़मानत दी कि मैं माजी में भी कर रहा था, और ना मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैं मुस्तकबिल में करूँगा, ना वो मेरे बस की बात है। और अगर आप माजी में पीछे जाते जाओ तो एक वक्त था जब मैं कुछ था ही नहीं, लेकिन हम्द फिर भी थी, और एक वक्त मुस्तकबिल में आने वाला है जब मैं कुछ होऊंगा ही नहीं, लेकिन हम्द फिर भी होगी। तो इस बात की ज़रूरत है कि हम्द ऐसी हो जो ना माजी में फंसी हो, ना हाल में, और ना मुस्तकबिल में। और अगर आपने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो वक्त की कैद में फंसा हुआ ना हो, तो वह फ़ेल तो हो नहीं सकता, वो क्या होना है? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसमें अब वक्त की कैद नहीं रही। दूसरी बात, जब फ़ेल होता है ना कोई काम, तो उसका फ़ाइल भी होता है, करने वाला। मैंने कहा था मैं हम्द करता हूँ, करने वाला कौन हुआ? मैं। अगर मैं कहूँ हम हम्द करते हैं, तो करने वाले कौन हुए? हम। अगर मैं कहूँ तमाम मखलूक या तमाम कायनात हम्द करती है, तो करने वाले कौन हुए? तमाम कायनात। लेकिन जब मैं कहूँ हम्द अल्लाह के लिए है, जैसे कुरान ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम्द अल्लाह के लिए है, किसी करने वाले का जिक्र है ना? हम्द अल्लाह के लिए में वक्त की कैद नहीं है और किसी करने वाले का जिक्र नहीं है, क्योंकि तमाम कायनात हो ना हो हमद हमेशा रहेगी। हमद इस कायनात से पहले भी थी, हमद इस कायनात के बाद भी होगी। ऐसी हमद अल्लाह ताला की जो ना वक्त की कैद में हो, ना किसी के हमद करने वाले की कैद में हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहा होता यहमदु जमीउल खलाइक अल्लाह या यहमदुल्लाह जमीउल खलाइक, तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की हमद करते हैं या करते थे या करते रहेंगे, तो फिर हम एक तरह से कम हो जाती, उसका दारोमदार होता मखलूक पर। मखलूक है तो हमद है, मखलूक नहीं तो हम नहीं। अगर मैं कहूँ मैं हमद करता हूँ, मैं हूँ तो हमद है, मैं नहीं तो हम नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है हमद अल्लाह की है, मैं हूँ ना हूँ हम फिर भी हैं। इससे एक और बात भी सामने आती है, जो जो लोगों का अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है ना, वो कहते हैं यार तुम क्या किस कैसे खुदा की इबादत करते हो, तुम्हें क्या मुसीबत है, इस खुदा को क्या ज़रूरत है कि तुम उसके सामने नमाजें पढ़ो, सजदे करो, क्या शौक है उसे अपनी तारीफ करवाने का। क्योंकि दुनिया में जिसको अपनी तारीफ करवाने का शौक है वो बहुत मुतकब्बिर होता है। तो ये किस किस्म का खुदा है तो उसको अपनी तारीफ करवाने का शौक है। उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, यानी जब कोई मखलूक थी भी नहीं तब भी उसकी हम थी। इसी तरह सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी है, कहा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ذو الجلال والإكرام। देखें जलाल किस चीज़ को कहते हैं, जलाल कहते हैं जब किसी बादशाह की बादशाही को बयान किया जा रहा हो ना, वो जलाल होता है। और क्या अजीम शान आपकी सल्तनत है या जो भी है, तारीफ की जा रही है। जलाल आजकल क्या होगा, कोई चैम्पियनशिप जीत जाए, कोई मैच जीत जाए, जो जो फैंस कर रहे होते हैं ना, वो तजलील कर रहे थे, वो जलाल दिखा रहे होते हैं उसका। अगर कोई अकेला एक आइलैंड में बंदा या एक मैदान में कोई बड़ा कारनामा कर ले, कोई इर्द गिर्द कोई तारीफ करने वाला नहीं हो, तो उसकी जलाल हुई या नहीं हुई? जलाल करने के लिए आपको, जलाल होने के लिए आपको जलाल करने वाले चाहिए, कोई तारीफ करने वाला चाहिए, तब तारीफ होगी ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया में, जब कुल्लू मन अलैहा फान, तमाम फानी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे रब का चेहरा ज़ुल जलाल, जलाल वाला बाकी रहेगा। जलाल करने वाले, कोई तारीफ करने वाले हैं हो ना हो, वो बाकी रहेगा। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगे,
1: we hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.